श्रीनिवास जगदेश जयेक सिंधो श्रीदेवताग्रह भुजान्तर दिव्यमूर्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् श्रीमन्नभीषवरदाखिललोकबन्धो श्री श्रीनिवास जगदेश जयेक सिंधो श्रीदेवताग्रह भुजान्तर दिव्यमूर्ते श्रीवेङ्कटाचलपते तव सुप्रभातम् श्री स्वामी पुष्करणिकाप्लवनिर्मलाङ्गाः श्रेयोर्धिनो हर